0: फॉर एक्सप्रेस 6:50 आणि 1272 तेलंगणा एक्सप्रेस 7:15 आणि 11201 नागपूर शहडोल एक्सप्रेस 8:00, 22137 प्रेरणा एक्सप्रेस 8:15 आणि 12295 संघमित्रा एक्सप्रेस 8:40 आणि 16032 अंदमान एक्सप्रेस 9:05 आणि 61117 नागपूर अमला मेमू 9:10 आणि 01928 मद्रास स्पेशल एक्सप्रेस 9:20 आणि 12721 दक्षिण एक्सप्रेस 9:25 आणि 22692 बेंगलोर राजधानी 9:30 आणि 12101 ज्ञानेश्वर डिलक्स 9:40 आणि 12129 आझाद हिंद एक्सप्रेस 9:55 आणि या सर्व गाड्या आपल्या नियोजित वेळेवरच धावत आहेत. अधिक माहितीसाठी फोन नंबर आहे 139. रेल्वे गाड्यांविषयी नंतरची सूचना आपण ऐकू शकता आमच्या या सभेत 10:50. आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. 6:00 काही क्षणातच दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत हिंदी बातम्या.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे. यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी. श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे. इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी. दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी. यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है. इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है. यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है. आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी.
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है. अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है.
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड.
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है. श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है.
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है. भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है. भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया. समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा. उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा. पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल

0: कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिज़ुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्झ वर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रमाची सुरुवात करीत आहोत पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांच्या स्वराने। रचना संत बहिरोबा यांची आहे। संगीत पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचं।

0: इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं ऊनत्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। आदौपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यते। तथा सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। 7 वाजले आहेत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी

0: का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौथनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गौथनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय

0: ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोकसत्ता की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया।

0: करीत आहोत कार्यक्रम मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, मानकापूर चौक, कोराडी रोड, नागपूर.
1: श्रोते हो नमस्कार. मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमात मी वैदेही चौरे आपणा सर्वांचं स्वागत करते. श्रोते हो आज 17 मे म्हणजेच वर्ल्ड हायपरटेन्शन डे, याच अनुषंगाने आज आपण उच्च रक्तदाब कारणे आणि उपचार याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूरचे सुप्रसिद्ध हृदयरोगतज्ञ डॉक्टर निलेश अग्रवाल. नमस्कार डॉक्टर.
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब. आज हम हाई बीपी के बारे में बात करने वाले हैं. इसके कारण क्या होते हैं और लक्षण क्या दिखाई देते हैं और इस पर ट्रीटमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले तो हम बीपी के बारे में जानना चाहेंगे. बीपी एग्जैक्टली क्या होता है
2: जी? तो ब्लड प्रेशर जो होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारी खून की नसें होती है, उसमें जो प्रेशर रहता है, जो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तब उससे जो प्रेशर निर्माण होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है सिस्टोल में, जो वो प्रेशर जनरेट करता है उससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें जब प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, ऊपर का प्रेशर इतना है, नीचे का इतना है, तो सिस्टोलिक प्रेशर इज मोर, डायस्टोलिक प्रेशर इज लेस.
1: हाँ, तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होना चाहिए इन जनरल?
2: नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर.
1: हाई बीपी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हाई बीपी क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं?
2: देखिए, हाई बीपी होने का मल्टीफैक्टोरियल होता है. हाई बीपी होना प्राइमरली तो ये लाइफस्टाइल के कारण होता है. अगर हम लोग बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मोबिलिटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्लस हमारी डाइट में अगर सॉल्ट इंटेक ज्यादा होता है, फास्ट फूड का इंटेक ज्यादा होता है, और हमें बाकी ओबेसिटी भी ज्यादा है, तो ये सब कारणों के कारण हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है. कुछ फैक्टर इसमें अनुवांशिक भी होते हैं. अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, मदर फादर को या मामा चाचा को ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं.
1: ये परसेंटेज कितना हो सकता है?
2: देखिए, अगर हम नंबर की बात करेंगे तो वर्ल्ड में 150 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है. यानि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है इतने लोगों को ब्लड प्रेशर है, और उसमें से 50% से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है.
1: डॉक्टर साहब, इस बार अभी 17th को जो है, मतलब आज ही हाई बीपी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है हर जगह पर, तो इस बार कुछ थीम है इस डे की?
2: तो इस बार वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो 17th मे को सेलिब्रेट करते हैं, ये 21st वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है. इसका थीम है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर बीपी रेगुलरली, फाइट द साइलेंट किलर. इसलिए मैंने आपसे कहा कि 50% से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि उनको बीपी की बीमारी है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे आपने पूछा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते. अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो लक्षण कुछ नहीं मिलेंगे आपको. अगर आप चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है. तो सिंपल अनइजीनेस या हेडेक्स, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, अनएक्सप्लेन्ड हेडेक्स, या फिर जल्दी थक जाना, सीढ़ी चढ़ते हुए थोड़ी बहुत सांस फूलना, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हाइपरटेंशन के लक्षण नहीं होते हैं. हाइपरटेंशन यूजली हमें कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करता है. जैसे कि ब्रेन में कोई नस फट गई और बीपी इतना बढ़ गया कि ब्रेन की कोई नस फट गई और ब्लीडिंग हो गई, या पता चला कि हमने रूटीन टेस्ट कराया और किडनी के जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल खराब हैं, फिर हमने चेक किया तो पता चला कि बीपी 200 के ऊपर है, या फिर हार्ट अटैक होने के बाद पता चला कि ब्लड प्रेशर है. तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं. इसलिए ब्लड प्रेशर का एक ही डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें एक ही चीज है कि हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए. ब्लड प्रेशर हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें हाइपरटेंशन है और फिर हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं.
1: तो रेगुलर चेकअप ही बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा हम कह सकते हैं. डॉक्टर साहब, हाई बीपी, अब बीपी में दो टाइप से ऐसे हम बोल सकते हैं, एक लो बीपी होता है, हाई बीपी होता है. हाई बीपी में भी कुछ टाइप्स होते हैं?
2: हाई बीपी में भी सीवियरिटी होती है. देखिए, हाइपरटेंशन हम डिफाइन करते हैं 140/90 के ऊपर जब ब्लड प्रेशर जाता है.

0: अगर ये 180 के ऊपर जाता है तो हम इसे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहते हैं, अगर ये अबाउट 200 चले जाता है तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके उपचार करना पड़ता है।
1: आपने कहा कि लक्षण ऐसे बहुत कुछ दिखाई नहीं देते,
0: जी
1: लेकिन यदि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो
0: जी
1: कुछ लक्षण दिखाई देते हैं?
0: हाँ, अनइजीनेस उसमें हो सकता है, कई बार चेस्ट पेन होता है पेशेंट को, कई बार भारीपन लगता है, सर दर्द होता है, चक्कर आना, ये सब चीजें हाई बीपी की हो सकती हैं।
1: हाँ,
0: बट एज सच कई बार कोई लक्षण नहीं होता है और आप चेक करते हैं बीपी 160 170 ऐसा मिलता है।
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
1: डॉक्टर साहब, बीपी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हाई बीपी के बारे में हम बात कर रहे हैं फिलहाल। हाई बीपी की जब बात होती है तो ये जो बीपी बढ़ जाता है तो ये पर्टिकुलर स्पैन के लिए बढ़ता है या फिर कंटिन्यूअस बढ़ा हुआ भी रह सकता है?
0: जी, यूजली जो हमारे डायर्नल वेरिएशंस रहते हैं उसमें मॉर्निंग में हमारा बीपी कम होता है, धीरे धीरे इवनिंग तक आके बीपी बढ़ता है, 5 से 10 पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये बीपी परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए फिर जैसे कई बीपी के पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो ब्लड प्रेशर बढ़े रहने का एक लक्षण इंसोमनिया भी हो सकता है।
1: तो नींद ना होने के कारण भी बीपी बढ़ सकता है,
0: बीपी बढ़ सकता है और बीपी बढ़ने के कारण नींद नहीं आती।
1: हाँ,
0: ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दोनों चीज का।
1: ओके, जैसे इसका रिलेशन है, ऐसे और कोई डिसीज है जिसका रिलेशन बीपी से है?
0: जी देखिए, बीपी हमारे प्रायकर सभी अंगों को अफेक्ट कर सकता है। हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, हमारी आईज जिसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, तो जो हमारी रेटिना की जो छोटी छोटी नसें हैं उसमें अगर बीपी बढ़ जाए ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण वो नसें खराब हो सकती हैं। एक्सट्रीम स्टेजेस में प्लैपिलेडिमा होके हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है।
1: हाँ।
0: जी, ब्लड प्रेशर के कारण हमें नोज ब्लीड्स भी हो सकते हैं, एपिस्टैक्सिस। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे मरीज आते हैं नोज ब्लीडिंग लेके, एपिस्टैक्सिस लेके, जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है।
1: हाँ।
0: उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें हाइपरटेंशन है। बीपी के कारण हमारे हार्ट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हार्ट अटैक होने के लिए बीपी एक बहुत मेजर रीजन होता है। और जो हम लोग आजकल देख रहे हैं कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर के लिए भी ब्लड प्रेशर एक बहुत मेजर रीजन है। बीपी का असर हमारी किडनीज पे भी पड़ता है, किडनी फेलियर होने के लिए ब्लड हाइपरटेंशन एक मेजर रीजन होता है।
1: तो अलग अलग ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। डॉक्टर, इसके क्या कारण होते हैं मुख्य?
0: मुख्य कारण जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। थायराइड प्रॉब्लम हो तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सॉल्ट इनटेक आपका ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कई मामलों में ये अनुवांशिक भी होता है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को है ब्लड प्रेशर तो आपको भी हाइपरटेंशन होने का रिस्क होता है।
1: डॉक्टर, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं ये हम?
0: एकदम सिंपल है, सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद आप ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, 3 दिन तक रीडिंग्स लीजिए और उसका जो एवरेज है वो अगर 140/90 के ऊपर है तो इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ हाइपरटेंशन।
1: हाँ।
0: आजकल एक और कैटेगरी आ गई है कि बीपी अगर 130/90 के बीच में है तो उसे भी हमें, यानी वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक हाइपरटेंशन। हमें उसे अर्ली पकड़ के अर्ली लाइफस्टाइल चेंजेस से ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी होता है। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, मतलब एक रूटीन क्या होना चाहिए?
0: जी, अगर हम हाइपरटेंशन पर्टिकुलरली के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो होता है कि हमें लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना है। डेली एक्सरसाइज करना, सिंपल वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना। अगर हम रोज 30 मिनट्स भी वॉक करते हैं, वो भी हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं, तो भी ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकेंड होता है कि हमें जो दिन रात का जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पॉसिबल है तो आप योगा कर सकते हैं। फिर होता है सॉल्ट इनटेक को कम करना। इंडियन डाइट में सॉल्ट जो हम मेजर सोर्स होता है वो होता है सैलेड, पापड़, अचार, ये सब चीजों में हमको एडिशनल नमक जाता है। तो मैं कहता हूँ सैलेड खाना बहुत अच्छी बात है, फ्रूट्स खाना अच्छी बात है, बट उसमें ऊपर से सॉल्ट ना डालें कभी। और अचार और पापड़ का इस्तेमाल कम से कम करें। आजकल जो हमारा फास्ट फूड कल्चर आ गया है, फास्ट फूड में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, चाइनीज फूड और पिज्जाज, ये सब चीजों में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो

0: से अवॉइड करना चाहिए। ये दो तीन चीजें करके ही हम ब्लड प्रेशर को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर, बीपी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट क्या होती है?
0: देखिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल चेंज ही होता है। अगर लाइफस्टाइल चेंज करने से, अगर आप ओबीस हैं, थोड़ा वेट रिड्यूस करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर शुरू करेंगे, सॉल्ट इंटेक कम करेंगे, तो कई मामलों में बीपी कंट्रोल होने लगता है। अगर इसके बावजूद अगर बीपी कंट्रोल नहीं होता है, तो आजकल हमारे पास बहुत सेफ और बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो अब क्या होता है, जब हम बीपी की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, पेशेंट लेना तो शुरू करता है और फिर वो चेक भी करता है, लेकिन जब बीपी कंट्रोल हो जाता है तो वो बंद कर देता है। यूजली बीपी की दवाइयां बंद करने से पहले आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपका बीपी कंट्रोल है तो पहले डोज कम करके देखते हैं। अगर डोज कम करने के बाद वापस बीपी बढ़ता है तो आपको वो डोज की जरूरत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मेरी मदर हैं, शी इज टेकिंग बीपी मेडिसिन फॉर लास्ट 40 ईयर्स और उनको आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनका नियम है कि वो सुबह उठती हैं, चाय पीती हैं और अपना बीपी की दवाई ले लेती हैं। तो एक सिंपल नियम से उनका बीपी हमेशा कंट्रोल रहता है। तो ये जो मिथ्याएं हैं कि बीपी की दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ होता है, अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहा है किसी दवाई का, आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसको चेंज करा लीजिए, पर बिना परामर्श के दवाई बंद ना कीजिए।
1: तो मेडिसिन रेगुलरली लेनी बहुत जरूरी है,
0: रेगुलरली लेनी और चेक भी रेगुलरली करना है।
1: डॉक्टर साहब, इस विषय पर हम बात करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। श्रोतेहो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम। आजचा आपला विषय आहे उच्च रक्तदाब, कारणे आणि उपचार, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूरचे सुप्रसिद्ध हृदयरोगतज्ञ डॉक्टर निलेश अग्रवाल।
2: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
1: नमस्कार डॉक्टर।
0: नमस्कार
1: डॉक्टर, फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम में।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की कि बीपी क्या होता है, उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, कारण क्या होते हैं और एक डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या प्लान कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बीपी की भी कुछ स्टेजेस होती है क्या?
0: जी, तो बीपी की 3 स्टेजेस होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बीपी की 3 स्टेजेस होती है। एक होता है जब हमारा बीपी 140 से लेके 160 तक है, तो उसे हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी 140 टू 159 बोला जाता है एक्चुअली। फिर 160 से लेके 179 तक ये होता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, और अबव 180 को हम कहते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। तो हमें बीपी को स्टेज 1 में ही पकड़ लेना है। इवन अब तो WHO बोलता है कि जो अर्ली स्टेज होता है, यानी 130 से 139 के बीच में, अगर हम उस समय भी पेशेंट को मिलते हैं तभी हमको लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू कर देने चाहिए, ताकि वो स्टेज 1 में भी ना जाए।
1: तो स्टेज 1 की ट्रीटमेंट क्या होती है?
0: स्टेज 1 में सबसे पहले जो होता है कि हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, सॉल्ट इनटेक कम करना है, अगर स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग पूरी तरह से बंद करनी, किसी भी प्रकार से टोबैको यूज नहीं करना है। आजकल हम देखेंगे कि यंगस्टर्स में वेपिंग का बड़ा कल्चर आ गया है, तो वेपिंग इज नोन टू प्रमोट ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और इट इज इवन मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द रूटीन सिगरेट स्मोकिंग। बट आई वुड से कि हमें हर फॉर्म स्मोकिंग का छोड़ना है, हर फॉर्म टोबैको यूज का छोड़ना है, और एक हम जो सलाह रेगुलरली देते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन बंद ही करना है। फिर होता है कि अगर इससे भी स्टेज 1 में कंट्रोल ना आए, परसिस्टेंटली बीपी 140 के ऊपर है, तो हम फिर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं पेशेंट के प्रोफाइल के अनुसार। हमारे पास आजकल जो हम पढ़ते हैं, तो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां होती हैं वो 4 कैटेगरीज में होती हैं, ABCD। ए से ARB इनहिबिटर्स होते हैं, बी से बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, डी से डायूरेटिक होते हैं। तो पेशेंट के प्रोफाइल के अनुसार हम लोग दवाइयां शुरू करते हैं। पहले हम 1 ड्रग चालू करते हैं, एक दवाई से शुरू करते हैं। अगर एक दवाई से काम नहीं चल रहा है तो हम उसका डोज बढ़ाते हैं, अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर हम दूसरी दवाई ऐड करते हैं। अगर दूसरी दवाई से भी नहीं चल रहा है तो फिर कई कई पेशेंट्स होते हैं जिनको 3 दवाइयां या 4 दवाइयां भी चालू करनी पड़ती हैं।
1: ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज में भी हो सकता है।
0: फर्स्ट स्टेज में भी हो सकता है। बट यूजली फर्स्ट

0: स्टेज का हाइपरटेंशन एक या दो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है।
1: हाँ, उसके बाद यदि सेकेंड स्टेज जो आपने बताई 160 to 179,
0: जी
1: ये जो बीपी होता है,
0: जी,
1: हाई बीपी,
0: जी,
1: इसमें ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है?
0: इसमें ट्रीटमेंट प्लान है कि हमें बीपी को जल्दी से जल्दी 120-80 तक लाना है। अगर हमें दवाई एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़े तो भी ठीक है, एंड वी ट्राई टू एग्रेसिवली कन्विंस द पेशेंट कि ही नीड्स टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। अगर ओबीस है पेशेंट तो हम उसे वेट लॉस करने की सलाह देते हैं। हम बीपी बढ़ने के और भी अगर कोई कारण है तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई पेशेंट को कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। कई मामलों में हम एक रीनल आर्टरी डॉपलर करके देखते हैं, अगर किडनी की नसों में कोई छोटा मोटा ब्लॉकेज है उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, बढ़ सकता है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं। और अगर 180 के ऊपर जाता है, सपोज हम अगर सीवियर कैटेगरी में चला जाता है पेशेंट, फिर तो हम पेशेंट को एडमिट होने की सलाह देते हैं, उन्हें इंजेक्टेबल एंटी हाइपरटेंसिव देके उनका बीपी कंट्रोल करते हैं, मॉनिटरिंग में रखते हैं, हम उनके सारे पैरामीटर्स भी चेक करते हैं, ब्रेन, हार्ट, आईज, किडनी, अगर सब पैरामीटर सेटल हो जाते हैं उसी के बाद हम पेशेंट को ओरल मेडिसिन पे जिससे उनका बीपी कंट्रोल रहे वो करके फिर डिस्चार्ज करते हैं।
1: डॉक्टर, कभी किसी पेशेंट का बीपी कंटिन्यूसली हाई रहता है
0: जी,
1: तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं?
0: जी, हर ऑर्गन पे इसका इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम सबसे ऊपर ब्रेन से बात करेंगे,
1: हाँ,
0: तो ब्रेन की जो हमारी नसें होती हैं वो थोड़ी थिन वॉल्ड होती हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स। अगर परसिस्टेंटली हाई बीपी रहे तो ब्रेन की नस फट सकती है और उससे रक्तस्राव हो सकता है, ब्रेन हेमरेज जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। तो इसका क्या लक्षण रहेगा, पेशेंट ऐसा कंप्लेंट करेगा, पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं कि सर इतना दर्द हो रहा है सर में कि कभी जीवन में नहीं हुआ, तो वर्स्ट पेन ऑफ द लाइफ ऐसा बोलता है पेशेंट, वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ, तो दैट इज ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक कि शायद इनको ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो ऐसे पेशेंट का हम तुरंत सिटी स्कैन करके देखते हैं ब्लीडिंग का लोकेशन क्या है और उसका बीपी बड़ा एग्रेसिवली कम करते हैं। अगर हमें लगता है कि ब्लीडिंग बहुत सीवियर है तो कई बार ऑपरेशन करके वो हिमाटोमा को इवैक्यूएट करना पड़ता है। मैं इसीलिए कहता हूं पेशेंट्स को कि आप बीपी इतना बढ़ने ही मत दो कि आपको ब्रेन हेमरेज होने की परिस्थिति निर्माण हो।
1: हाँ हाँ, इसके अलावा बाकी ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट?
0: बाकी ऑर्गन्स पे जैसे अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आप रेगुलरली आपको आई चेकअप कराना चाहिए। जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है उसे हम सही स्टेज पे अगर कंट्रोल कर लें तो हमारा जो आगे चल के विजन कम होने वाला है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्टेज होती है जिसे हम पैपिलेडिमा कहते हैं, जिसमें रेटिना पे हमारे बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, उस स्टेज में कई पेशेंट्स को परमानेंट विजन लॉस भी होता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन की नसें, वैसे आईज की जो नसें होती हैं वो बहुत पतली और बहुत छोटी होती हैं।
1: हाँ।
0: उसमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो वहां का ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगा, तो पेशेंट को परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इसलिए अगर बीपी परसिस्टेंटली हाई रहता है तो आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के, किसी रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखा के अपना रेटिना चेकअप रेगुलरली करवाते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर, ऐसा कहा जाता है कि बीपी और हार्ट का बहुत ज्यादा रिलेशन होता
0: जी,
1: है, तो ये रिलेशन क्या होता है?
0: जी देखिए, हमारा जो हार्ट है वो जो हमारे वैस्कुलर रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट काम करता है, तो जितना बीपी ज्यादा रहेगा हार्ट को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स रहती हैं वो बड़ी होने लगती हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, हम वेट उठाते हैं तो हमारी मसल्स बड़ी होने लगती है, वैसे ही जब हमारा बीपी बढ़ता है तो हार्ट को एक तरह से जिम करना पड़ता है, हार्ट की मसल बड़ी होती है। लेकिन ये जो हाइपरट्रोफी होती है, जो जिम की हाइपरट्रोफी होती है वो हमारे लिए अच्छी है, पर ये जो हार्ट की मसल की हाइपरट्रोफी होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितनी मसल मास बढ़ेगा हार्ट में उतना हार्ट का ब्लड सप्लाई का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। तो अगर उसको हार्ट को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, जो बड़ी हुई मसल्स है उनको, तो फिर हमें हार्ट डिसीज होगा, ठीक है, इसे हम इस्केमिक हार्ट डिसीज होने लगेगा। हाइपरटेंशन होता है, ये हमें एथेरोस्क्लेरोसिस में भी कंट्रीब्यूट करता है। जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है यूजली उस समय कई बार पाया गया है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में जो हमारे जो प्लाक बने होते हैं कॉर्नरी आर्टरीज में वो रप्चर हो जाते हैं और वहां पे क्लॉट बन के एक्यूट हार्ट अटैक होता है। तो हाइपरटेंशन मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाने के लिए, प्लाक्स बढ़ाने के लिए, और दूसरा वो प्लाक रप्चर करके हार्ट अटैक करने के लिए। एक और जो बीमारी हाइपरटेंशन के कारण होती है, जो जिसके बारे में बात कम की जाती है, वो होती है एओर्टिक डिसेक्शन, जो हमारे हार्ट से निकलने वाली महाधमनी होती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं,
1: हाँ,
0: अगर बीपी परसिस्टेंटली हाई रहे

0: तो ये आर्टरी फट सकती है और इसके अंदर बीच में एक फ्लैप बन के वहां पे ब्लड जमा हो सकता है और ये एक इमरजेंसी बन जाती है। इसमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है जिसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। तो अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारी हार्ट हेल्थ को कंसिडर करते हैं। तो
1: श्रोते हो आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
2: किडनी और लिवर पे भी इसका इफेक्ट होता है बीपी का?
0: बिल्कुल होता है। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी, जो हमारी किडनी होती है वो एक एंजाइम सिक्रेट करती है, एंजाइम या हार्मोन बोल लीजिए, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, वो हमारी किडनी सिक्रेट करती हैं। तो हमारी जो बीपी की दवाइयां भी बनी हैं वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को रोकने के लिए बनी है। जब बीपी हमारा परसिस्टेंटली हाई रहता है, किडनी और रेनिन एंजियोटेंसिन बनाती है। तो किडनी के ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखना ये हमारा काम है। अगर बीपी बढ़ा रहेगा तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ब्लड सप्लाई है वो इसेंशियल ऑर्गन्स की तरफ जाएगा।
2: हाँ।
0: वो जाएगा हार्ट और ब्रेन की तरफ, किडनीज को ब्लड कम मिलेगा। किडनी को ब्लड कम मिलेगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा और फिर उससे और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जो डायलिसिस पे चले जाते हैं पेशेंट, जिनको क्रॉनिक किडनी डिसीज हो जाता है, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाता है, इनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं।
2: तो इसलिए
0: किडनी को बचाने के लिए आपको एक सिंपल यूरिन एल्बुमिन करके देखने से ही पता चल जाता है कि हाइपरटेंशन आपकी किडनी को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इवन डायबिटिक्स में भी यूरिन एल्बुमिन बढ़ता है, हाइपरटेंसिव में भी बढ़ सकता है। और उनको कम करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। अगर हमें सही समय पे पता चल जाए कि किडनी को डैमेज होने लगा है बीपी की वजह से, तो हम इसको सालों तक दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं बिफोर पेशेंट स्टार्ट नीडिंग डायलिसिस।
2: डॉक्टर, लीवर पे इफेक्ट होता है बीपी का?
0: जी, लीवर पे भी ये है कि जो लीवर का फंक्शन है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगता है। देखिए, लीवर हमारा बहुत ही, हम कहेंगे कि बहुत सहनशील ऑर्गन होता है। ठीक है, हम लोग जाते हैं, रूटीन टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में दिखता है ग्रेड 1 फैटी लीवर। ठीक है, हम कुछ मैटर यानी देखते नहीं उसके बारे में। तो ये जो फैटी लीवर होता है ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, हमारे डाइट की वजह से, हमारे अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से, हमारे ब्लड प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे धीरे करके लीवर को डैमेज करने लगता है। उसके कारण लीवर के मेटाबॉलिज्म पे भी फर्क पड़ सकता है।
2: हाँ।
0: तो हमें सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
2: बीपी की वजह से कोई भी ऑर्गन यदि डैमेज हो जाता है तो फिर क्या किया जा सकता है?
0: देखिए, अगर हार्ट अटैक होता है किसी को, अगर एक्यूट हार्ट अटैक होता है, वो हॉस्पिटल सही समय से पहुंच जाता है, तो हम उसकी, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद हम पेशेंट को ब्लड थिनर पे रखते हैं और उसका बीपी बहुत एग्रेसिवली कम करते हैं। यानी हमारा टारगेट रहता है कि हम 120-80 तक लेके जाएंगे बीपी को, भले उसके लिए 2 दवाइयां या 3 दवाइयों की जरूरत पड़े। फिर हम उसके बीपी को कंट्रोल रखते हैं और पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं, डायटिशियन के पास भेज के डाइटरी एडवाइस देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज के उससे एक्सरसाइज गाइडेंस देते हैं। एंड जो पेशेंट फॉलोअप पे रहते हैं उनका हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं।
2: डॉक्टर साहब, एक बार ट्रीटमेंट यदि हो जाती है बीपी की और बीपी कंट्रोल में यदि आ जाता है तो क्या मेडिसिन बंद कर सकते हैं?
0: देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि बीपी की दवाई बंद नहीं होती है, डोजेस हम कम कर सकते हैं। अगर लाइफस्टाइल पेशेंट बहुत अच्छा रखता है तो हो सकता है सिर्फ एक गोली से ही उसका काम चल जाए। तो एक गोली अपने जीवन के लिए लेना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। और आजकल जो हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल हैं ये बहुत सेफ है, तो यू कैन टेक देम फॉर इयर्स एंड दे विल नॉट हार्म यू, दे विल प्रोटेक्ट यू।
2: बीपी के लिए चेकअप कब कब करना चाहिए?
0: आइडियली हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमें सुबह चेक करना चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं, आप वॉशरूम जाके आ जाएं, उसके बाद 2 से 3 मिनट लेटना है, उसके बाद बीपी चेक करना है।
2: हाँ।
0: बीपी हमेशा रेस्टिंग स्टेज में चेक करना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपी हाई होता है, हाँ। एक बार कभी चेक किया होता है और बाद में उन्हें लगता है कि मुझे तो कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या ये सही है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा गया है, कि ब्लड प्रेशर का पहला सिम्टम ही उसका कॉम्प्लिकेशन होता है कि ब्रेन ब्लीड हो गया, पेशेंट की डेथ हो गई और पेशेंट को पता भी नहीं था कि उसको हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक हो गया, आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ गई या बाईपास कराना पड़ गया और आपको तब जाके पता चला कि अरे मुझे तो ब्लड प्रेशर है, मुझे हाइपरटेंशन है। तो अगर आपको कभी डायग्नोस

0: हुआ है तो उसे इग्नोर ना करें, या आप इसमें आपकी भलाई है कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ एक बात और आती है, बहुत सी सर्जरीज ऐसी होती है जिसमें शुरुआत में बीपी चेक किया जाता है,
0: जी
1: तो ऐसे इसमें हाई बीपी के पेशेंट ने कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए?
0: हाँ जी, देखिए जब सर्जरी, कोई भी आपकी सर्जरी प्लान्ड है तो ब्लड प्रेशर प्री एनेस्थेटिक चेकअप में बीपी चेक किया जाता है। अगर आपका बीपी उस समय हाई है तो आपको यूजुअली कोई फिजिशियन के पास भेज के आपकी मेडिसिन शुरू करते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान आपका बीपी कंट्रोल रहे। नहीं तो अगर जैसे मैं हार्ट सर्जन हूं, अगर मेरी सर्जरी के दौरान बीपी बहुत ज्यादा रहेगा तो ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, हार्ट को डैमेज होने का रिस्क ज्यादा होता है, किडनी डैमेज होने का रिस्क ज्यादा होता है, ब्रेन ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो इसीलिए हम बीपी की मेडिसिन सर्जरी के दिन तक बीपी की मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने

0: अगर आपका बीपी उस समय हाई है तो आपको यूजुअली कोई फिजिशियन के पास भेज के आपकी मेडिसिन शुरू करते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान आपका बीपी कंट्रोल रहे। नहीं तो अगर जैसे मैं हार्ट सर्जन हूं, अगर मेरी सर्जरी के दौरान बीपी बहुत ज्यादा रहेगा तो ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, हार्ट को डैमेज होने का रिस्क ज्यादा होता है, किडनी डैमेज होने का रिस्क ज्यादा होता है, ब्रेन ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो इसीलिए हम बीपी की मेडिसिन सर्जरी के दिन तक बीपी की मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने डाइट और एक्सरसाइज के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया है, फिर से एक बार इन दोनों चीजों का इम्पोर्टेंस हमारे श्रोताओं
0: जी
1: को बताइएगा।
0: देखिए, WHO जो कहता है वो कहता है कि 150 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज इन अ वीक। तो अगर हम इसको एक छोटा सा क्लबिंग करेंगे तो अगर हम हफ्ते में 5 दिन भी 30 मिनट्स का वॉक कर लेते हैं तो दैट इज गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ एंड दैट इज गुड टू कंट्रोल बीपी। अब ब्रिस्क वॉक कितना करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम चल रहे हैं और हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं,
1: हाँ,
0: हम बात कर पाए इतना ब्रिस्क वॉक करना चाहिए कि इतना हमारा सांस ना फूले कि हम बात भी ना कर पाए। तो ये हो गया एक्सरसाइज के बारे में। कई लोग एरोबिक एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं, तो अगर आप ब्रिस्क वॉक्स में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप साइकिलिंग में कंफर्टेबल हैं, साइकिलिंग करें। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है जैसे बैडमिंटन है या बास्केटबॉल है तो आप वो स्पोर्ट्स को परस्यू करें। उससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, आपका स्ट्रेस भी रिलीव होगा और आपकी एक्सरसाइज भी होगी। कई लोगों को जिम जाने का शौक है, जिम करने से भी आपके बीपी में फायदा होगा, लेकिन आपको बैलेंस करना है। वेट ट्रेनिंग भी करनी है लेकिन साथ में एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर ली, बट हमेशा थोड़ी सी एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। फिर अगर हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितना आप नेचुरल फूड खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप सैलेड्स खाइए पर उस पर से सॉल्ट नहीं डालना है। आप फ्रूट्स खाइए, एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग आपकी दिन में फ्रूट्स और सैलेड की होनी चाहिए। जब भी आप कोई मेजर मील ले रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक बोल सैलेड उसके साथ खाइए। फिर जो हमारे घर में बना हुआ खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सब खाने से बीपी एक्चुअली कंट्रोल में रहता है, क्योंकि घर में हम लोग फ्रेश फूड बनाते हैं। उसमें हम आप देखेंगे कि जो बाकी फ्रूट्स हैं उनमें हाई सॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि उसको प्रिजर्व कर सके। हम लोग अचार में नमक और तेल इसीलिए ज्यादा डालते हैं कि उसको प्रिजर्व करना है। पापड़ में नमक इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसको प्रिजर्व करना। जो हम फ्रेश फूड बनाते हैं उसमें नमक कम रहता है। और आप एक बार कम नमक का खाना शुरू कर दीजिए, 10-15 दिन में आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको ज्यादा नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, जो श्रोता आज का हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे?
0: देखिए, जो WHO की थीम है इस बार कि चेक बीपी रेगुलरली एंड लेट्स कम टुगेदर टू फाइट द साइलेंट किलर। तो हमें इस साइलेंट किलर को हराना है और वो हराने के लिए सबसे सिंपल टूल है रेगुलर बीपी चेकअप। अगर हम रेगुलर बीपी चेकअप करते हैं तो हाइपरटेंशन को हम डिफीट कर सकते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करके, अगर लाइफस्टाइल से नहीं हो रहा है तो 1 या 2 टैबलेट से आपका बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरा यही कहना है, अगर आपको हाइपरटेंशन है उसे इग्नोर ना करें, रेगुलरली चेकअप करें। और हम मुझे लगता है कि इसमें एक पब्लिक भागीदारी की बहुत जरूरत है। सभी पेशेंट्स को, पेशेंट की फैमिलीज को, डॉक्टर्स को, इवन गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और वॉर फुटिंग पे बीपी कंट्रोल के लिए प्रोग्राम्स स्टार्ट करने चाहिए।
1: डॉक्टर नीलेश अग्रवाल, आप यहाँ पर आए और उच्च रक्तदाब कारण और उपचार इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं को मार्गदर्शन किया। मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोते हो, हाँ होता मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मानकापुर चौक कोराडी रोड नागपुर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम। आजचा आपला विषय होता उच्च रक्तदाब कारणे आणि उपचार, आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन केलं मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापुर चौक कोराडी रोड नागपूरचे सुप्रसिद्ध हृदयरोगतज्ञ डॉक्टर निलेश अग्रवाल यांनी। तेव्हा डॉक्टर निलेश अग्रवाल यांच्यासह मी वैदेही चौरे घेते आपली रजा। नमस्कार। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर। या कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या होत्या संगीता अरसपुरे।
2: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
3: हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला। आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। 10 वाजले आहेत, प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम हॅलो मनभावन।

0: हेलो मन भवन,
1: हेलो,
0: नमस्कार
1: नमस्कार मैडम। मैडम
0: नमस्कार। हेलो मन
1: कौन
0: भवन या
1: बोलते हैं?
0: कार्यक्रमात तुमचं स्वागत।
1: हाँ मैडम, मी अनिता रामरतन जानोरकर
0: हाँ
1: पाचपरी ठक्करग्राम इथून बोलत आहे।
0: बोला।

अमच बारी दौलत ही 3 लाखाच है। कायम चिपरी दौलत ही 3 लाखाची गजेंतला कायम चिपरी दौलत।

गाता रहे मेरा दिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बॉर्डर फिल्म के गीत से, जिसे गाया है हरिहरन और साथियों ने। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में सुनते हैं गुलाम फिल्म का गीत। गीत समीर का है, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: इमरान अजीज मीजान के स्वरों में सुनते हैं कौसर मुनीर का गीत। संगीत दिया है प्रीतम ने, फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।
1: तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए।

समीर का गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वरों में। फिल्म का नाम है आशिकी, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

भारत वंदे मातरम जय, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम जय, भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों से सबसे आगे बड़े कदम, रुक ना पाए तूफानों से सबसे आगे बड़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ा है निकले माता के चरणों में हम, वंदे मातरम वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराज उन्नत माता माता का, उन्नत माता माता का, चरण

0: अच्छा, अस्मिता वाहिनीवरून तसंच AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरून.
1: 10वीच्या निकालानंतर आता विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या वाटचालीला सुरुवात होत आहे. करिअर, शिक्षण आणि नवीन संधीच्या या प्रवासात इंग्रजी भाषेचं महत्व अधिक जाणवतं. परंतु काही विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडतो, इंग्रजी मध्ये बोलणं जमेल का? इंग्रजीचा सराव नेमका कसा करावा? याच विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत सुप्रिया जाधव.
2: इंग्रजी बोलण्याची सुरुवात अगदी साध्या, सोप्या, छोट्या आणि आपल्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये छोट्या छोट्या वाक्यांनी करायची आहे. त्यांनी थिंक इन इंग्लिश आणि स्पीक इन इंग्लिश हा मूलमंत्र लक्षात ठेवायचा आहे. जर त्यांची विचार करण्याची पद्धत इंग्रजीमध्ये सुरू झाली तर आपोआप बोलताना त्यांचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.
1: ऐकायला विसरू नका सुप्रिया जाधव यांची मुलाखत सोमवार दिनांक 18 मे रोजी दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळात अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरही. वनिता मंडळ.
0: मध्यम लहरी 537.6 मीटर्स तसंच 558 किलोहर्ट्स वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी. हे प्रसारण आपण AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता. दुपारचा 1 वाजतो आहे. दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या हिंदीतल्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं. श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे. दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी.
4: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है. आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है. इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है. दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन.
3: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की. सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया. नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है. भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता. श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही. मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है. इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा

0: 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 537.6 मीटर्स तसंच 558 किलोहर्ट्स वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी महाराष्ट्राच्या मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। हे प्रसारण आपण AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता। दुपारचा 1:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत गीतबहार मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक

0: प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से

0: मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई है।

0: और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मध्यम लहरी 537.6 मीटर्स तसंच 558 किलोहर्ट्ज वर ही आहे। आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। हे प्रसारण आपण AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता। दुपारचे 2:30 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत नाद ब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। आजच्या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत कलाकार मीरा श्रीधर यांचं कर्नाटक शैलीतील गायन, राग आरभी, हेमावती आणि सुरुती। त्यांना व्हायोलिनची साथ केली आहे विमर्शिनी संतोष, तर मृदंगमची साथ आदित्य राजगोपालन यांनी केली आहे। ताल खंड चापू, आदिथालम आणि रूपक थालम। ऐकूया कलाकार मीरा श्रीधर यांचं कर्नाटक शैलीतील गायन, राग आरभी, हेमावती, सुरुती।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला

वॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है।

0: ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यवसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
3: आकाशवाणी नागपूर, नेहा क्षीरसागर आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। जनगणना 2027 अंतर्गत राज्यभरात 11,14,277 कुटुंबांनी केली स्वगणनेची प्रक्रिया पूर्ण। राज्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती। हुंडई मोटर्स आणि व्हीएनआयटी नागपूर यांच्यात हुंडई सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापनेसाठी सामंजस्य करार। पूर्ती सिंचन समृद्धी कल्याणकारी संस्थेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आज नागपूर जलसंवाद या राष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन। आणि आज आणि उद्या अकोला, अमरावती, वर्धा या जिल्ह्यांसाठी उष्णतेच्या लाटेचा ऑरेंज अलर्ट। आता सविस्तर बातम्या। जनगणना 2027 अंतर्गत स्वगणनेचा टप्पा पूर्ण झाला असून राज्यभरात 11,14,277 कुटुंबांनी स्वगणनेची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे। 1 मे ते 15 मे दरम्यान ही प्रक्रिया राबवली गेली। पुणे, मुंबई, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यातल्या नागरिकांनी स्वगणनेत सर्वाधिक सहभाग नोंदवला। पुण्यात सर्वाधिक 1,53,568 कुटुंबांनी स्वगणनेची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली। गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे 3,688 कुटुंबांनी स्वगणना केली, तर गोंदिया जिल्ह्यात 3,881 आणि वर्धा जिल्ह्यात 7,618 कुटुंबांनी स्वगणनेची प्रक्रिया पूर्ण केली। ज्या कुटुंबांनी स्वगणना प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे त्यांनी त्यांच्या भागात येणाऱ्या प्रगणकाला एच या अक्षरानं सुरू होणारा 11-अंकी स्वगणना ओळख क्रमांक द्यावा। यामुळे माहिती संकलन प्रक्रिया सुरळीतपणे पूर्ण होण्यास मदत होईल असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे। नागपूर जिल्ह्यात नियमबाह्य वाळू वाहतूक आणि वाळू चोरीच्या घटना लक्षात आल्यानंतर पोलीस आणि महसूल विभागाला तत्काळ कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत। राज्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली। बावनकुळे यांनी आज नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राज्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले।
4: वीज ब्रास, तीन ब्रास वाळू, त्यात होणारे ऍक्सिडेंट आणि अवैध वाळूची चोरी हे माझ्या लक्षात आली होती आणि त्यामुळे आमच्या पोलिसांनी, महसूल खात्याने पुढाकार घेतला आणि नागपूर जिल्ह्यात मोठी कारवाई झाली, भंडारा जिल्ह्यात मोठी कारवाई झाली, राज्यामध्ये जालन्यामध्ये आमच्या तिथल्या जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी चांगली कारवाई केली आणि त्यामुळे मला असं वाटतं राज्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने वाळू येणे हे काही चालणार नाही। कडक कारवाई

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। सः स्वीडन देशस्य प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 संधिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसंधौ वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालेति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती।
0: अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। नीदरलैंड्स देशस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पञ्च देशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः हरित परिवर्तनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्स सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलाः रक्षा अंतरिक्षं जलवायु परिवर्तनं जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षास्ति। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यतः यत् प्रमुखम् अखिल यूरोपीय व्यापार

0: सुरक्षा व्यवस्थायाः तक्षणमेव कार्यं कृतम्। रेलयानं च स्वयमेव स्थगितम्। रेलचालकदलेन तत्क्षणमेव प्रभावितौ उभौ कोचौ पृथक् कृतं तथा च अस्यां घटनायां यात्रिणः क्षतेः कापि सूचना नास्ति। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन इबोला महामार्याः घोषणा कृता। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा युगांडा देशयोः प्रसृतं कोरोना विषाणोः प्रकोपं अंतर्राष्ट्रीय स्तरे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालरूपेण घोषितमस्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठनस्य महानिदेशकः टेड्रोस अधानोमा घेब्रेयसस इत्यनेन 300+ संदिग्ध प्रकरणानां तथा 88 मृत्यूनां विवरणानन्तरं एषा निर्णयः प्रदत्तः। WHO संस्थया सामाजिक अन्तर्जालीय पटले प्रकाशिते सन्देशे स्पष्टतया उक्तं यत् अयं प्रकोपः COVID-19 इव वैश्विक महामारी आपत्कालस्य श्रेण्यां नागच्छति तथा च अन्तर्राष्ट्रीय सीमाः न निरोधव्याः इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। स्वास्थ्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अयं प्रकोपः इबोला विषाणोः दुर्लभेन बंडिबुग्यो प्रभेदेन सम्बद्धः अस्ति, यस्य कृते अधुना किमपि स्वीकृतम् उपचारः उपवा उपलब्धः नास्ति। इबोला रोगः शरीरद्रवसंस्पर्शेन प्रसारं करोति तथा च गभीरां प्रायः प्राणघातिनीं च व्याधिं जनयितुं शक्नोति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बाबूजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अद्य नेपाल देशीया पर्वतारोही कामी रीता शेरपा इत्येषा 32 माउंट एवरेस्ट शिखरम आरुह्य ऐतिहासं विरचितवती। 55 वर्षीया एषा पर्वतारोही विश्वस्य उच्चतम शिखरं सर्वाधिकवारं आरोहणस्य स्वकीयमेव कीर्तिमानं पुनः आरेखितवती। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी श्रोते हो आमचे कार्यक्रम AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकू शकता। संध्याकाळचे 6:30 वाजलेत। आता ऐकूया बालदोस्तांसाठी कार्यक्रम गंमत जम्मत।

0: प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: आठ दशकों की है ये गौरवपूर्ण गाथा।
2: ये माध्यम है प्रेम की निष्पक्ष भाषा।
1: आप भी जुड़िए हमारे साथ
2: विज्ञापन के जरिए,
1: दूर दराज तक पहुँचाइए आपके उत्पाद का नाम।
2: विज्ञापन की जानकारी हेतु आइए
1: या संपर्क कीजिए आकाशवाणी नागपुर के मार्केटिंग विभाग से।
2: फोन नंबर है 254।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी

0: सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी एजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल

वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: AIR या मोबाईल ॲपवर देखील ऐकता येतील. रात्रीचे 10 वाजत आले आहेत आणि थोड्याच वेळात आपण ऐकणार आहोत अखिल भारतीय संगीतकार रवी बासरिया कार्यक्रम.
1: श्रोते हो, आयुष्य खूप सोपं आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये त्याचा आनंद दडलेला आहे. छोट्या गोष्टींमध्ये मोठा आनंद शोधूया, ऐकूया, जगूया आनंदी. अस्मिता वाहिनीवर रोज सकाळी 6:30 वाजता जगूया आनंदी.
2: आकाशवाणी है. आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है. आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन. आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े. आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे. आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे. आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया. आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया. 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके. इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया. आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं. आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं. आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं. आप तंतकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं. बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है. आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं. आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं. आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं. सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह. आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं. हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे. आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया.
3: दिस इज आकाशवाणी. वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार. Born and raised in Chaliskao, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India. ऋणा

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Sri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर दहेक पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.